0: यतै सपुवा मादै मार्ने त काटी
1: न आत्ता छ वा सापन कुछु नि कराइ साप कुछु नि कर ल्या ऊ अपने चल गेल त कुछु कराइल त ओ सक्कु साप बिखा फेनी रट
0: बिखा हो कि नि हो कसी कति त दाई
2: ल्या नेपालमा पाजिना बिखा सापनको विषयमा सुन एक ठोरठ गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेक्ना मेसे लक्क होइ सेक्ठ और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुले थ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान देख पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्ठ ओ और रठ कैली जातक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर बठे था रकत फे पाची होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने फुनकारना बाधे ई साप दस लाख बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकनक कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छ्याको अनाज बिग्रिना समयमा सापनका कटाई अथवा डसाईका घटना ढ्युर बिना कथा बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बचारा नासिबे सापनका डसाईका घटना ढ्युर बिना कर्लक पादै
4: झुर जसिन सापनका डसाई हानिकारक नि रह उहो फे यदि सपवा डस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
1: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
10: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो? पाछ से सुरु करल मनै घर सिज्जार सेक्ल?
11: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
10: मिस्तरान बर्जनाउक न घर हेरो न कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुर घुम जाए त थाहा पाए।
12: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
13: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा फिर उस तबाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर भर आई थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं सीख तो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर्षित
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
4: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
3: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
4: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
4: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
3: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
4: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
3: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
4: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
3: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रो

0: सामुदायिक रेडियो टीका पुरैथुङकी बिहान 9 बजे थारू भाषाकी खोज खबरमा अपनेहरूको स्वागत बा। खोज खबर सेमै सीता चौधरीकी राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र और नेपाली पात्र में सुनती रहवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। प्रयोगशाला के कर्मचारी कुटपीट करना फिजियोथेरापिस्ट तिवारी के परफरहरी के अनुसंधान शुरू। कैलाली में 16 वर्षीय किशोर के प्रकरणी एक युवक पकड़ाऊ। सरकार हा माफी मट्टी किसान हमोल उपलब्ध करना संसद में करिश्मा कठरिया के मार कर्णाली नदी के त्रास तपेलक सांसद ग्यौरी के कहे। और फ्रांस फीफा विश्वकप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश। टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला इंचार्ज उमेश बजगाई के ऊपर कुटपीट करना फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवारी के ऊपर प्रहरी अनुसंधान शुरू करलबा। प्रहरी नियंत्रण में रलक तिवारी जिला अदालत कैलाली में से 7 दिन के म्याद थपकेलक अनुसंधान शुरू करलक। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश दागी जानकारी दिलबाट मंगलवार दिन के अस्पताल के आंतरिक व्यवस्थापन के विषय में हुई छलफल में विवाद बढ़ पाछा प्रयोगशाला प्रमुख बजगाई अस्पताल के फिजियोथेरापिस्ट तिवारी कुटपीट कलबाट बजगाई कुटपीट करना तिवारी के विरूद्ध निवेदन देहल पाछा प्रहरी तिवारी पकड़ाऊ करलक अनुसंधान शुरू करलबाट। कैलाली में 16 वर्षीय किशोर के ऊपर जबरदस्ती करनी कलक आरोप में एक युवा पकड़ाऊ कलबाट पकड़ाऊ पर्ण में बर्दगुरिया गांवपालिका जगतपुर निवासी 23 वर्षीय समीर डंगौरालबाट बालिका के पर जबरदस्ती करनी कलक वहां उजुर के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय भजनी मसी खटलक टोली बिहीबार वहां पकड़ाऊ कलक जनेलबा। घटना बारे आवश्यक अनुसंधान प्रहरी हुटी रहल जनेलबाट। प्रतिनिधिसभा सदस्य करिश्मा कठरिया के सरकार हम माफी मग्ती किसान हमल उपलब्ध कराए पर्णा ममा कलबाट। प्रतिनिधिसभा के कालिक बैठक में बोलती सांसद कठरिया के सरकार हम तत्काल अन्नदाता किसान संघ क्षमा चना करती मल उपलब्ध कराए पर्णा मा कलबाट। सरकार हम किसान हम चाहना मलो बिउ धेरै नै सेकलक आफ्नो लालसा महसुस कलक बोटैकी वहां हनहनी जुरिएलक समेत सीता मल कलक मल चाहना के विना किसान पीड़ा सुन की सरकार हम मन का कर दुखना का कति प्रश्न कलबाट। और सांसद कोमल गेवाली फे लद्दिया कटानो बढ़ाई के त्रास मरलक कैलाली के टीकापुर जानकी कुछ जोशीपुर भजनी नागरिक हेव पीड़ा लग बोटिल बाट। खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पाछ फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ।
1: प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा संचालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा बाह्रको पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर कैलाली।
3: चुरे जोगाऊ, पानीका मुहान बचाऊ, वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं, हरियाली बढाऊ, चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो, समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनि।
0: विश्राम पाछा फरिस्ते स्वागत बा। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 4 अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित हुँदा बिहिबार बैठकमा प्रधानमन्त्री बादेन शाहकै तर्फमा चाहिँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयकमा पारित गर्न प्रस्ताव धल रही वकर सभा स्वीकार कल। अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउण्डरिङ निवार तेस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव धलबाट भूमि व्यवस्थापन सहकारी संघीय मामिला तथा समन्वय प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव धलबाटी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कुछ नेपालीन संशोधन गर्न विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव धलबाटी 400 विधेयक सभा पारित गर्न यही असार 23 गते राष्ट्रिय सभाकी 400 विधेयक दफावर छलफल केला विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइला है। असार 24 गते एकदिन 400 विधेयकीय पर्दफावर छलफल सरकार प्रतिवेदन लेख्ल बिहानकै प्रतिवेदन हेर्के दिनकै सभामा पेश कल ओ पारित हुल कागज बढिलोबाट। कैलालीमा प्रहरी हिरासतमा चाहिँ भगलक थुनुवा पक्राउ पलबाट आइतबार रात इलाका प्रहरी कार्यले हिरासतमा चाहिँ भगलक लागू औसत मुद्दा के थुनुवा टिकापुर 31 वर्षीय संजय नागरजी पक्राउ कलक प्रहरी जनैलवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै प्रवक्ता प्रहरी न्याय परिषद डीएसपी केन्द्र तिमिल सेना नगरसिंह टिकापुर नगरपालिका चारकी अस्थिरी मसे पक्राउ कलक जानकारी देलबाट उहाँके अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरकै प्रमुख प्रहरी न्याय परिषद डीएसपी प्रकाश डाङ्गी नेतृत्वकै टोली नगरजीह नियन्त्रणमा लेलबाट उहाँके पहिचान नै खुल्ला करके हेलमेट र मास्क अनुहार छपके मोटरसाइकल चढ़ी रहेल बेला पक्राउबाट नगरजी आइतबार रातके फे पानी पिना बहानामा जाके ड्यूटी मरला किल्लाका प्रहरी जवान लली भण्डारी लड़ाके भग्न रहे घटना पाछा प्रहरी भण्डारी निलम्बन करके छानबिन कर्तिरहलबाट डीएसपी तिमिल सेना नेतृत्वमा समिति गठन कलबाट कैलालीमा भरुवा बन्दुक बरामद कलबाट जिल्ला के कैलाली गाउँपालिका पास पवेरा सामुदायिक वन भित्र लुकेलक छिपुलक बेला व्यवहारी सेवास्थामा एकजना नाले भरुवा बन्दुक एक थान बुधबार संचेत प्रहरी बरामद कलबाट गोप्य सूचना के आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली समेत मसे खटलक प्रहरी उक्त भरुवा बन्दुक फेला पार्के बरामद कलक जनिलवा यस सम्बन्धमा प्रहरी थप अनुसन्धान कर्तिरहलबाट खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछा फेरसे विश्वन्तिर सामुदायिक रेडियो उठिका एफएम
5: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
6: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो
7: हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दर विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080
8: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
9: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
9: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
10: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417
0: विश्राम पाछा फेरसे स्वागत बा नेपाल राष्ट्र बैंक असार 27-28 गते के सार्वजनिक विदा के दिन में फिर रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालन हुन जानेलवा राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका सार्वजनिक सूचना जारी गरके शनिबार वा आइतबार सार्वजनिक विधाके दिनमा फेरि रियल टाइम ग्रेस सेटलमेन्ट प्रणाली बिहानकै 8 बजेदेखि सन्ध्याका 8 बजेसम्म सञ्चालन हुन बोटेलबाट राष्ट्र बैंकका चालू आर्थिक वर्षकै अन्तिम समयमा भुक्तानी प्रणाली सहज गराइकला असिन व्यवस्था गर्न अलगलग जानेलवाट आप खेल खबर कप्तान किलियानो एम्बापे व उस्मान डिम्बेले को गोलमा मोरक्को हटेटी फ्रान्स फिफा विश्वकप 2026 के सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नबाट अमेरिका के बोस्टन स्टेडियममा सुलक पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा मोरक्को 2-0 गोल पराजित गर्दै फ्रान्स विश्वकप के सेमी फाइनलमा पुगलबा एम्बापे पहिलो हाफमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्न नसकल दोस्रो हाफमा फे गोल गर्न सफल हुलेसे फे अरू गोल केला सहयोगी बन्न फ्रान्स लगातार तेस्रो चो विश्वकप के सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नबाट इन्स्याग फ्रान्स 2018 विश्वकप के ट्रफी जित्न रहे र लसेफे 2022 उपविजेता बन्न रहे आजकै खेलकै 60 मिनटमा एम्बापे गोल गर्दै फ्रान्स पहिलो अग्रता दिलेल वगर पास खेलकै 66 मिनटमा उहाँ नै पास मिडल पास उस्मान डेम्पेले गोल गर्दै फ्रान्सकै अग्रता दोब्बर बनैला वगर पास खेलमा थप गोल हुई नै सकल फ्रान्स मोरक्को किपर 2-0 गोल जित निकल्ला फ्रान्स सेमी फाइनल खेलमा बेल्जियम र स्पेन बीचकै विजेता टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हुलबाट यस समाचारसँग खोज खबर ओराली दिनासे पहिले खबरकै मुख्य शीर्षक फेरसे एकचो प्रयोगशाला के कर्मचारी कुटपीट करना फिजियोथेरापिस्ट तिवारी के पर प्रहरी के अनुसंधान शुरू। कैलाली में 16 वर्षीय किशोर के प्रकरणी एक युवक पकड़ाऊ। सरकार हम माफी मक्ति किसान हम मल उपलब्ध कर रहा सांसद मह करिश्मा कठरिया के मत कर्णाली हृदय के त्रास सतैलक सांसद गेवरी के कहे। वो फ्रांस फीफा विश्वकप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश। लिटा बकला खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद लिटी बकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदा हेटू या कृपा 12 बजे की खोज खबर सुन सकती सामुदायिक रेडियो टीका प्रायफ्रम सुनती रवि।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 27 गते, साउन 2 गते, 9 गते, 16 गते, 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: काहुल बाबू अपने कलकलाइत रही, अपने काकर कलकलाइत रही। ले भुइया में के हो, काकर भुइया में धनवा नाल बाटी। एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई डाटू अपने नी आते हैं ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू झट्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ। यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ल। राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश झट्ते ही आओ, हाँ सबको काम छोड़ कर
2: बैठा। संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी ना झट्ते ही।
1: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झट्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केन्द्र में ले जा रहे पड़ता। ऐसी ब्याला में सबसे झट्ते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केन्द्र पुगाई पड़ता। मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया। मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डालू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए।
3: लगा दादू
4: करी 7:10 से मोटरसाइकिल स्वयं से दी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
5: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप दस लक मन बचाई सक दी था वो इन मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था। सांप दस लक मन न छत्त से छत्त उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले उ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

राम राम समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठल सकू रेडियो प्रेमी मई घर संग्रकन में स्वागत के संगे अभिवादन करना चाहम मई चांद मोरी गोल अपने के संगे पुगे संग्रह सीपीजी ऑनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम एप्स मार्फत ओ हमारे पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सकू जाने संगसंगे कार्यक्रम गौचानी हो हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब 11 बजे सम्म हमारे सकू जाने संगसंगे होने कर थी वाच संगसंगे हुई या पुगलाटी लाइन खुला कर सकलाटी 091-5161-255 के डगर खुला भाई भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिंजान कर सकना कार्यक्रम गोचाली यानी कि अपने हुकरे रेडियो मार्फत संग्रह बने लग बनाए लग अपने हुकरे अपने हुकन के मन व इच्छा व रुचि व कले से अपने हुकरे आई सीख थे लाइन खुला भाई इमें का जानकारी करना चाहम अपने हुकन के संगे वो संग्रह के अभी के समय में का करती आती जो एकदम सीटर सीटर सीटर मौसम कर ले भाई कोनो ठाउँ में सायद पानी फे पर्ते हुई एकदम मजै हुई कुशल मंगल आराम हुई एकचोटि समय निकाल के होने से फिर साथ देख चाहे ना भूलै भी हिमय अर्जी करना चाहम अपने हुकन के संगे मने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक गीत से

हजुर, कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाहब आफ्नो उपरान आफ्नो भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी गलेसे सुन्टी बाटी समुन्नत समाजके लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्टी बाटी कार्यक्रम गोचाली हो हरेक हप्ताको शुक्रबारकै दिन सवा 10 बजे हामीले करिब करिब करिब 11 बजेसम्म सँगसँगै हुन गर्थे। एकदमै शीतल शीतल शीतल मौसमको सँगसँगै एकदमै मिठा सबैको मन सुन गीत सबैको सँगै ढल्ली बिल्कुलै मौसम एकदमै शीतल शीतल भावै कोनो ठाउँमा पानी पर्थ्यो यो सँगै खेतीपातीको काम फेर लगभग लगभग लगभग वराइटी भयो वरा चुकल भयो कोनो सँगै लगैटी हेबी कोनो सँगै खेतीपाती लगासेकल हेबी खैर मजै हेबी कुशल मंगल आरामे हेबी एकचोटि समय निकालके होले से फेर साथ देख चाहिँ ना भुलैबी यीमै का जानकारी गर्न चाहम अपने हुनके सँगै कार्यक्रम गोचाली हवै हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे से करिब करिब 11 बजेसम्म हाम्रो सँगै आइन गर्थे सङ्घर्य बनाएक लग सङ्घर्यके खोजीमे रहल सङ्घर्यके गोचाली बनेक लग बनाएक लग जो आई अपने उपकरण के लग एकदमै मजा मौका हवै अपने होके हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे से करिब करिब करिब 11 बजेसम्म हाम्रो सँगै हुन गर्थे वा छ सक्कु जाने सँगै आँटी जौन ठाउँमा रेडियो नाइटीबाट हो ठाउँ सेफे अपने होके एकदमै लग्य हो सज्ञ आँटी अनलाइन मार्फत जो अनाइ सेक्थी वह ठाउँ से पनि सहभागी फेर जनाइ सेक्थी कना मै अपने मै गर अर्जी गर्न चाहम साथ डेट याद सीपीजी मोरी बोल अपने उनके संगे पुगैत याद और साथ देख पड़ना अपने उपकरण के पाला थे वही तब मारे अपने के गोचाली के खोजी में रहल संघरे बनाओ बनाओ बनाओ जैसी लागल संघर्य उपरे लव रहा ओंढी चे कोई संघर्य उपरे फे अपन रानी बानी बताए लग जो ऐसे थी अपने उपरे कैसी रानी बानी हुई संघरेकन मन पड़े थी कैसी रानी बानी हुई संघरेकन नाई मन पड़े थी बताए लग जो अपने उपरे आई सेक्थी कार्यक्रम में सहभागी जनाई सेक्थी का नापने क्रम में अर्जी करना चाहम लाइन खुला बावे अठे पर फिर संदेख गीत जोरी गीत के पास हमरे फिर से वाटी लाइन खुला बावे

0: হাজুর দাদা
1: খবর কইছেন দাসু শান্তি জি কে
0: খবর ঠিক বা কহবা দাদা একদম পানি ইতি বা ঝিম ঝিম কা পর স্তর স্তর মৌসুম বা কহ পড়ল দাদা
1: স্তর স্তর স্তর মৌসুম বা রিম ঝিম ঝিম পানি পড়তি বা ওই
0: হাজুর দাদা
1: বর্দি লং খেতি পাটি লাগা কে ওরাইল হো ইয়া লাগাই নাই বা
0: লগভগ ওরাইল হো কহ পড়ল দাদা
1: এ হাজুর রুকে ফে ওরা সে কলাটি
0: ওরা সিগলি কা
1: কই গাটে লং ওরাইলি না
0: এক দিন মে ওরা দে দাদা লগভগ 17 গাটে লাগাই মে ওরাই
1: এ একে দিন মে ওরা দে
0: হাজুর
1: দাদা হ্যাঁ বিলকুল খুশি লাগল শুরু করে সকছি
0: আপন সে ছোট মাইন মায়া করনা আপন সে ভারী মনে আদর সম্মান করনা ফুটবল ভলিবল খেলনা নয়া সক্রিয় বন্ধবা তোমরা ভার মাধ্যমে সে দূর না যাতা বেপার নই করনা কর পড়ল দাদা
1: আপনি কে ভাবন রুচি কোন সংঘরে উকরে মন পড়াই ছুহি আপনি সে সংঘরে বনেক লাগে একদম স্থান যে কেসি কে ভেটাই সক যাই
0: কোন দে এক
1: নম্বর সরে সকছি
0: 9814-5150 রাজাপুর নগরপালিকা ওয়ার্ড নম্বর 3 সুস্তান্ড 14
1: এইটার থেকে আনো নম্বর মে একদম সহজে সে আপনি ভেটাই সক যাই
0: হাজুর দাদা
1: সমঝে সকছি সংঘরে একজন
0: সংঘরে টেকনিক্যাল দাদা আপনার সমঝে তো কপর
1: আবেগ লাগবি দাহি
0: राम
1: राम सुशांत जी साथ डेले रहे राजापुर तीन के संग रहे नियमित संग रहे रेडियो प्रेमी संग रहे साथ देती रहे ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है यदि वहाँ के भावना और रुचि अपने मन पर थी वहाँ संगे संघरिया बन्नास जो मन परल संघरिया उग्र चाहे राजापुर नगर पालिका 3 सुशांत चौधरी आई छर थका में पाई सकती अस्त के नंबर छोड़ ले आते 98 51 खैर वहाँ के नंबर मेन खास याद नहीं है 98 50 51 खैर अस्त कुछ नंबर छो नहीं ढेर धन्यवाद देना चाहब वहाँ है नंबर और वहाँ सोने ढेर धन्यवाद देना चाहब यदि वहाँ के भावना और रुचि अपने मन पर थी वहाँ संगे संघरे बनना जो मन पर संघरे के चाहे इच्छा थे मैं वहाँ है भेटाई से भी करना मैं अपने मई का जानकारी करना चाहब लाइन खुला पाओ आपके पाला में अपने के फोन पर बिल्कुल ही सफल हुई से कि आपने होकर फ्याई से थी सहभागी जनाई से थी रेडियो मार्फत चीन जान कर एक लग संघरे बने एक लग बना एक लग जो अपने आई सकती है मई का जानकारी करना चाहूँ अपने उत्तर के संगे और संघरे के सीतर सीतर सीतर मौसम कर लेवा को ठाव में पानी पड़ती हुई को ठाव में सीतर सीतर मौसम कर लेवा वही बिल्कुल एकदम मजा मौसम शीतर मौसम कर ले बाबई तमाम संग्रह के खेतीपाटी लगा के शायद सेक ढरल हुई को संग्रह के पसगुरल संग्रह के खेतीपाटी लगैती हुई भी जहां जौन अवस्था में हुई रेडियो टीका पर एफ एम 101 MHz जरूर फिर सुनती हुई भी वनैती हुई भी या वह ठाव से अपन सहभागी फिर जाना सकती करना अपने मई का जानकारी करना चाहम और संग्रह होंगे आजकल लमसम लमसम बरखा बूंदी के समय दिन आज से कल बाबई तब मारे अपने होते लडिये के आरी तीर बैठना लग लडिये के लग गए बैठल बस्ती गांव के चाही संग्रह के एकचोटी सलाख के बैठ देवी ई मई का जानकारी करना चाहम ताकि बहिया आए तो अपने होते सतर्क हो के चाहे सुरक्षित स्थान में जो अपने होते हो देवी ई मई का जानकारी करना चाहम अपन है चाहना महत्वपूर्ण कागजात उसके के खैना लगैना के जो मजा से जो होकर भी और चाहे छोट लड़का परकन उसके के चाहे बुढ़ायल उसके के चाहे ऐसी रहल चाहे उमेर के चाहे मन एकदम ख्याल कर भी ईमई का जानकारी करना चाहम कुलों में ढेर पानी आए थे लड़का परकन चाहे एकदम खाली ना छोड़ देवी वहां के हेरता एकदम नियमित कर भी ईमई का जानकारी करना चाहम और संग्रह के बरखा बूंदी के समय में अपन घर लग्ञ के अंगना में हुई घर वरीपरी के ठाव में हुई तमाम छोट छोट खलहट्टी रठेंगे में चाहे पानी जमे ना देवी जो कि मच्छरन के बैठना घर रहट हो जो पानी जमे ना देवी पानी जमना ठाव टूटल फूटल बाल्टी टायर हुलकल से वह चाहे सुरक्षित ठाव में धरबी वो चाहे रात के नेंगे पड़ल बेरी जून रात के अथवा अपने होते नेंगे पड़ल कले से अपने होते एकदम सावधानी पूर्वक अपने होते नेंगवी ओजरार में नेंगना बानी बैठेबी टॉर्च लाइट के प्रयोग करबी लट्ठी लेके नेंगना जो बानी बैठेबी अपने फिर सुरक्षित रही अपन घर

यार है फिर सुरक्षित हुई ना जो बानी बैठे भी मई का जानकारी करना चाहूँ अपने हजन के संगे लाइन खुला बाई 091-5-61-255 के नगर खुला बाई हठे पर हमरे फिर से एक ठो गीत जोड़ी गीत के बाद संगे फिर से हुई बाटी।

हजुर कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाहब अपने ग्रहण www.tikaparefm.org tikaparefm एप्स मार्फत र हाम्रो पात्र मार्फत संसारकै कोही भी कोनो से सकुजाने सँगसँगै आदि ठाउँसे अपन सहभागी जनाइसक थिए 101 मेगाहर्जको तरंग मार्फत अपने रेडियो सेटसम्म हाम्रो दुई जाने बाटी सीपीजी साथ डेटिया मई शान्त के पार अपने के लाइन के प्रतीक्षा में हाम्रो बाटी खैर बिल्कुलै अपने ओकरे भावना रुचि मेल खाना संग्रहणके सँगै भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न जो मन परल संग्रहकरे गोचाली यानी कि संग्रहके खोजीमे रहल संग्रहकरे अपन रानी बानी बताएक लोक जो आवश्यक थी ये मैगर जानकारी अपने हुकम गर्न चाहम। लाइन खुल्ला बाबै शीतर मौसम बाबै एकदमै शीतर शीतर एकदमै मजा मौसमके सँगसँगै निम्ति घुम्ती आती फुर्सदके समयमे आदि काम धन्धामे लागल बाटी मजै हिबी कुशल मंगल आराम हिबी एकचोटि समय निकालके उनसे फेर साथ दे चाहिँ ना भुलैबी हिमै का जानकारी गर्न चाहम अपने हुकमके सँगै हो। सँगै आजकल पानी चाहिँ धेर धेर धेर बर्खा बुन्दीके समय आजकल अपने हुकमे पानी शुद्धिकरण करके जो पानी पीना बानी बैठेबी तमाम संक्रमण होइन से बची ओ बचाई खान पीन वस्ते के स्वस्थ होइन जो अपने एकदमै सावधानी अपने भी मै का जानकारी करना चाह हम अपने उनके संगे जो व्यायाम होइन से पहले अपने के सावधानी अपने भी वो सुरक्षा अपने भी मई का जानकारी करना चाहम अपने हुकम के संगे खान पीन के संग संगे पीना पानी के फे मजा सफा जो होकर भी मई का जानकारी करना चाहम। लाइन खुला बावई शून्य 91 5 61 255 के नगर खुला बावई गोचाली कार्यक्रम मार्फत अपन संघरिया बनाएक लग जो आइसक थी लौरा लौंदी चाहे कोई संघरिया के फे अपन अपन भावना रुचि बताएक लग जो आइसक थी इमाई का जानकारी करना चाहम अपने हमारे संघरिया बना के चाहे बीच में जो छोड़ना नहीं कर भी इमाई का जानकारी करना चाहम ओ वस्ते के लाइन में एबी कॉलेज से पूरा बार बटवा के जा देवी मिसकल चाहे ना मार देवी आई जानकारी करना चाहम अपने हुकन के संग लाइन खुला बाई शून्य 91 5 61 255 के नगर खुला बाई गोचाली कार्यक्रम मार्फत सहभागी जनाई सकती तमाम संघरे गोचाली कार्यक्रम मार्फत ढेर ढेर ढेर संघरे बनाई सफल हुई बात नहीं आपके पाला में अपने हुकन के फोन फिर बिल्कुल ही सफल हुई सकी अपने हुकरे फिर आई सकती अपन भावना रुचि बताई सकती अपने हुकरे अपन भावना रुचि यानी कि अपन अपन में मेल खाइना रानी बानी बताए लग वस्ते संघरिया पाइक लग घटाइक लग जो अपने हुए ई कार्यक्रम मार्फत सहभागी जनाई सकती कन अपने हुकम मई का जानकारी करना चाहम। लाइन खुल्ला बावे निर्धारित समय फिर बिल्कुल डगर कट्टी लागल अवस्था में हमारे आप गलाती कुछ समय किल बाकी बावे अपने हुए फोन कर भी कल से फोन में केंद्रित होके बात बटने जो प्रयास कर भी पूरा बात बटवा के जा देवी संघर बना के बीच डगर में चाहिए संघरिया के दिल है ना टूटा देवी इमाई का जानकारी करना चाहम अपने हुकम के संगे लाइन खुल्ला बावे पर फिर से हम देखो गीत जोरी गीत के पास है फिर से भैया बातचीत।

हजुरकार्यक्रममा फेर स्वागत गर्न चाहब अपने हुकरण निर्धारित समय फेरको डगर कति लागल अवस्थामा हाम्रो आ पुगलाती खै रत्नपटेल सम्झेदेवनाके साथ डेली रेडियो प्रेमी माइगर संघकन धेर धन्यवाद सहभागी जनय संघकन धेर धन्यवाद पुनः संघके सहभागी जनैन प्रयास करल हेबी प्रयास कर देलक मैं अपने फिर ढेर धन्यवाद मोरी गोल अपने के रेडियो सेटसम्म पुगा देले कोसे संघरे सीपीजी हे फिर ढेर ढेर ढेर धन्यवाद देती एक ठो माइगर गीत छोटी मई कार्यक्रम संचालक चांद के पारे एक हफ्ता के लग विदा हेतु अपने के पल शुभ रहे राम राम।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्ता बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं रहे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी गुवाज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
2: अधि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन लबाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइ कहु सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाइ।
3: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो।
4: विगत 27 वर्ष देखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्था का रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर, BCA, BBA, BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रम मा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजे सम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nast.edu.np मा उपलब्ध छ।
3: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट, उत्तर भेडी 4 धनगढी, फोन नम्बर 091-523312 र 523949।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भीटा निखो रहीदा
2: मुस्कान पिथाई घरक भीटा आमी निके निवराइ छ कि का खेतो म सखलारन कला मिनी ले जाई पना रह
1: आबो वराइदा डांसी बादर
2: ले ले वही मिनी बना कर दी है तू ले जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ बिटा मत बिला को बा माटी दे सब दिए कर टीका हाँ सब दियो। अय्या दाई सब का डरन
2: दाई खै खै कहाँ काटन छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरन।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मत सब का डरलस लेव हाली
3: काविल काकी काविल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपवा करलस कल
3: ना त्याव काकी तो मुस्कान निया त्या का स्थान थक बैठो ना बेन काकी मुस्कान न स्वास का न सुटाई हर चर नी का राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना रही वो हाथक चुड़िया की निकाल दी था वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था
2: बैठा भैया सबको कटला था और आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ने कान का अथवा मुंह ले सूझ का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कटला घाव आंजर पांजर कटना दगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निकाल खा वाकर सबको कटला था मर लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लिखाई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई जा जाए का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कह कर हेरा पड़ल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में कुछ सर्पदन से उपचार कही जिना रही था हो वहाँ ले जाए पड़ल मुस्कान हमें
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा ला रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान हना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डस्ल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकले से हुकर सपो विषाह अलग निरलग पहचान कई खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मने यहाँ बताई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपवा डसलक मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी क्लाक वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई खा पत्ता लगाए क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झलै फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस्ता बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: ए सन्टेकी आमा, पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो हो त, जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइजन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पनि भाँचि गयो।
0: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
1: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनचाँदीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर प्रहरी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-261।
3: नाता छ सापन कुछुनी कराइ साप कुछुनी कर ल्या वो अपने चल गेल त कुछु कराइल त ओ सक्कु साप बिखा फेनी रट
4: बिखा हो कि नि हो कसी कति दाई
5: ल्या नेपालमा पाजेना बिखा सापनको विषयमा सुन एक ठोर गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्छ यी कटला से निबाई फे स्याकट तर कटलक पाछ डेह भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मे से लक्क होइसेक्था और रठ डोम जोन बरा रिसाहा मेरिक रथ निकर फाट फुले ठ डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख संध्या बिहान देख पर्छ निकर कटला से फे लक्क होइसेक्था ओ और रठ कैरी जातक साप निकर कटला कलसे कटलक भाग सुई था ओ बरा कर से बठे था रकत थे पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बघोपने न फुनकारना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिक न कटाई एकदम खतरनाक रहा।
6: बर्खा छ्याको अनाज बिग्रिना समयमा सापनको कटाई अथवा दसैँको घटना झ्युर बिना कथा बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बछारा नासिबे सापनको दसैँको घटना झ्युर बिना कर्लक पादै
7: झ्युर जसिन सापनको दसाई हानिकारक नि रह उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
8: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै छ।
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मौलाव सम्रपात्र नेपाली पात्र में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांवपालिका के से टीकापुर नगर पालिका के खर्च कम करेल के दुईठा में जुआ खेती कलक 21 जना पकड़ाओ सांसद द्वारा मुकु के नेपाली की मृत्यु लगाये ढेरसिन विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण और फ्रांस फीफा विश्वकप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश। पूरा खबर कैलाली की टीकापुर नगर पालिका आर्थिक वर्ष 2082-83 में 74.63% बजट खर्च करगिबा। चालू आर्थिक वर्ष के सरकारी रकम खर्च करना समय असार 25 गते राखी 12 बजेसम टीकापुर नगर पालिका चालू तर्फ 80.67% पूंजीगत तर्फ 64.25% करके जम्मा 74.63% बजेट खर्च करगिबा। आर्थिक वर्ष 2082-83 के टीकापुर नगर पालिका के 1,05,51,86,00,000 बजेट में 78,75,75,000 रूपया खर्च हुए। टीकापुर नगर पालिका के लेखाधिकृत लक्ष्मी ओर जानकारी दिलवाटी जानकी गांवपालिका के चालू आर्थिक वर्ष में 84.11% खर्च करगिबा। ओमह पूंजीगत खर्च 64.31% चालू खर्च 92.43% खर्च हुईबा। आर्थिक वर्ष 2082-83 में गांवपालिका के 64.94,00,000 बजेट 54.62,00,000 रूपया खर्च हुईलक जानकी गांवपालिका के लेखा अधिकृत दिनेश माझी जानकारी दिलवाट। जोशीपुर गांवपालिका के चालू आर्थिक वर्ष में 85.24% बजेट खर्च करगिबा। गांवपालिका के लेखा अधिकृत टिपेश तिमिल सेना के अनुसार चालू तर्फ 93.19% पूंजीगत तर्फ 66.14% करके जम्मा 85.24% बजेट खर्च हुआ। लम्किचुहा नगरपालिका के आर्थिक वर्ष 2082-83 में 75.18% रकम खर्च करगिबा। चालू तर्फ 88.32% पूंजीगत तर्फ 57.04% बजेट खर्च करबा। नगरपालिका के 1,22,00,000 बजेट अलग 91.78,00,000 रूपया खर्च करलक। नगरपालिका के लेखाधिकारी झनक नेपाल ने जानकारी दिलवाट। नेपाल सरकार की

0: আদমিয়া গাদামা ট্রেটা হাইড্রো নিয়াবিনল টিএসসি কে কেলিক 0.3% বড়ি নাই হুনা ব্যবস্থা করিলা বিক্রি ও প্রয়োগ কি অনিবার্য রূপে প্রয়োগশালা মাসে পরীক্ষণ করা হইবা অনুমতি বিনা অতকলক শর্ত বিপরীত গাঁজা খেদি বিক্রি অবসর প্রসার কলক লাগু অসর সম্বন্ধিত প্রচলিত কানুন অনুসার কার্যবাহী হুনা ব্যবস্থা করিলা সঙ্গ গাঁজা কে দুরুপয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা প্রদেশ সরকার কে নিয়মন সরেন্দ্র পুনঃ স্থাপনা কেন্দ্র সঞ্চালন করা ব্যবস্থা ফে বিধেয়ক ম সমেট কিলবা প্রতিনিধি সভাকে আজকে বৈঠক মা সাংসদক মুকে গণেশ নেপালী কি মৃত্যু লগায় ধীরসিং সমসাময়িক বিষয়মা সরকারকে ধ্যান আকর্ষণ করলাবাট বৈঠকমা আকস্মিক সম্মেলক মুকে সাংসদ খড়ক বাহাদুর শাহী রাজ্যকে গলত নীতিকে কারণ গণেশ নেপালী আত্মদাহ করপনা অবস্থায় লক্ষণা জরিবানা বড়টি কানুনী কার্যান্বয়ন হইলা সেফে ভ্রমশীমুক্ত হইয়া সরকারকে ধ্যান আকর্ষণ করলাবাট অস্তক সাংসদ বর্ষমান পুনঃ ইশোদা কুমারী বরাল সহজন খাতুন আশিকা তামাং ইন বাহাদুর মহর গীতা গুরুং লগায়ত সরকারকে গলত নীতিকে কারণ সুকুমবাসী সড়ক মালপত্র হুনা পলক ও গণেশ নেপালীকে আত্মদাহ করা অবস্থা হইলক স্মরণ করটি জনতা দেশভিতর খাইসেকনা বাতাবরণ বনাইনা সরকার ধ্যান আকর্ষণ করলাবাট অস্ত বৈঠক শূন্য সময় সাংসদ কিষান সময় মল উপলব্ধ করা বারবার বিদ্যুৎ অবরোধ হইনা সময় সাবধান করা লাগু অসত নিয়ন্ত্রণ ধ্যান দেনা সরকারকে ধ্যান আকর্ষণ করলাবাট হিংসা আজকে বৈঠক শুরু হইনা সঙ্গ প্রতিপক্ষ দলকে সাংসদ প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ সীমাকে সম্বন্ধমা দেনা হইলক অভিব্যক্তি সচ্চাইনা ও সাংসদকে রেকর্ড মাসে হটেনামা কতি উঠলক বিরোধ জনাইলাবাট সভামুখ ডোল প্রসাদ আরিয়াল সময় দিহলপাশ নেপালী কংগ্রেসকে সাংসদ বাসনা থাপা সীমা বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে কাহে সচেনা মাকলবাট সাংসদ থাপা রাজ্যে আতঙ্কের কারণ এক বিবাহ আপন শরীর আগে সরকার সমেত রাজ্য মুখ দর্শক বনেলক এম্বুলেন্স সব পঠেনা অনেক প্রহরী প্রশাসন লগায়কে অস্পতাল পুগল কতি উহাকে উদ্ধার কলসে গ্রেপ্তারে হুইলক প্রশ্ন করলবাট অস্তক নেকপা এমালেকে সাংসদ ভূমিকা লিম্বু সুম্বা প্রধানমন্ত্রীকে অভিব্যক্তি সচেনা ও ভারতীয় সুরক্ষা বল নেপালকে সুস্থা ক্ষেত্র প্রবেশ কল তথা দার্চুলামা ভারতীয় সৈনিক বিমান অনুমতি বিনা নেপালী আকাশ প্রয়োগ কলক বিষয় ভারত কূটনীতিক নোট পঠাইলক নাই পঠাইলক বারে সাধারণ জানকারী করেনামা কলবাট অস্তক বিপক্ষ দলকে সাংসদ পার্বতী বিক রাধিকা রমতেল জ্ঞান বাহাদুর শাহী লগায়তকে সংসদ উঠলক প্রশ্ন শুনকে জবাব দেনা সরকার ধ্যান আকর্ষণ করলবাট খোঁজ খবর ফেরছে বিশ্রাম বিশ্রাম পাশা ফেরছে বিশুন্তির সামুদায়িক রেডিও টিকা প্রায় ঘর তা
1: জেনতেন লাগাইও अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
1: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
2: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
1: अब त म ढुक्क
3: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
2: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
5: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
4: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डी फोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
5: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार
4: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772
6: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
7: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: रामपाछा फिर्से स्वागत बा आप खेल खबर। कप्तान किलियानो एम्बाप्पे उस्मान डेम्बेले के गोलमा मोरक्कोहाँ हटाइटी फ्रान्स फिफा विश्वकप 2026 के सेमी फाइनलमा प्रवेश कलबा। अमेरिकाके बोस्टन स्टेडियम अहिलो पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा मोरक्कोहाँ 2-0 गोल पराजित गर्दै फ्रान्स विश्वकपके सेमी फाइनलमा पुगलबा। एम्बाप्पे पहिलो हाफमा पेनालिट मार्फत गोल गराउनै सकल, दोस्रो हाफमा फे गोल गर्ना सफल हुले से फे अरो गोल खेलाक सहयोगी बनल। फ्रान्स लगातार तेस्रो चो विश्वकपके सेमी फाइनलमा प्रवेश कलबाट। हिंसाग फ्रान्स 2018 विश्वकपके ट्रफी जितलरला से फे 2022 उपविजेता बन्न रहे। खेलके 60 मिनटमा एम्बाप्पे गोल गर्दै फ्रान्स पहिलो अग्रता दिला। वकर पास खेलके 66 मिनटमा उहाँ नै पास मिडल पास उस्मान डिम्बोले गोल गर्दै फ्रान्सकै एकता दोब्बर बनिँदा वकर पास खेलमा थप गोल हुन सकल। फ्रान्स मोरक्कोके पर 2-0 गोल जित निकल्ला। फ्रान्स अब सेमी फाइनल खेलमा बेल्जियम स्पेन बीचकै विजेता टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हुलबाट। यही समाचारसँग खोज खबर ओराइल जनासे पहिले खबरके मुख्य शीर्षक फेर्छ एकचो। जानकी गाउँपालिकाकै सेध्यो टिकापुर नगरपालिकाकै खर्च कम। कैलालीकी दुई ठाउँमा जुवा खेल्ती कलाक एक्काइसजना पक्राउ। सांसदद्वारा मुगु नेपाली मृत्यु लगायत धेरैसिन विषयमा सरकारकै ध्यान आकर्षण। फ्रान्स फिफा विश्वकप 2026कै सेमी फाइनलमा प्रवेश। गीता बक्ला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद। डिटिया बक्ला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन्न सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्राइफम सुन्ती रवि राम राम।
8: राहुल कमल आइन बुखाइल बाटो त
9: हेरिन काका आई फुला टुरे बारीमा गेल रही सबो काट देली बीस निकाल देवी की कैके लैके आयल बाटो
8: सबको कटलक विषक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तारीफ प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सबको कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा ख सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
9: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तर
8: सर कुछ दिन कही आयाना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था चिंता नहीं पड़त
9: खाई ना तब ना ट्रेन कुछ फेर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कई सकली बाटो
8: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागे के था मरछवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी रे बाबू संदेश रोकर झट से बाहर आता
10: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा सापनका कटाईले मनैनक मृत्यु नहुएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गराइला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर धरलरह पठा सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेजिथा।
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
12: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
4: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भयो म त अब
0: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
4: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
0: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरा पारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
4: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
0: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848578 28

0: लागिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उन पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आ तू कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दीदी कहिए नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कतरा सुघर बना कान लाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुत्रुके छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 9868147 99 24 60 25 32। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 9924 67 28 25।
3: कौन व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कुटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ट्ज।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के ऊपर।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

शिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।